गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया, एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती, यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा एक हाल है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन हित गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नू दित्ती है, मेर कीती है पातशाह ने। आख्या भाई कोई सुने, कोई गावे, कोई उपदेश करे, किसे भी जाति दा होवे, कोई नीच कोई ऊंच नहीं, बल्कि सारे दा सत्

0: तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलहार, सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

गुरु नानक दे चरण ऐसे पारस हन जे इस दे नाल लोहे नो भी शाह देईए तां लोहा भी पारस बन जांदा है। सात संगत बोलो श्री पारस पेट पए से पारस। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती तां उसकी मनोकामना पूरियां हो गईयां। जे गुरु नानक दे दर दी सेवा किसे ने निष्कामता दे नाल कीती तां गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। सत सगत बोलो श्री धन गुरु नानक सच्चे पातशाह श्यामा दा दीवान सजे है ताइए एक प्रेमी आके साहब जी दे चरणा विच एक टका मथा टेकया। गरीब बिचारा जितनी बिचारे दी बित सी आके एक टका जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरणा विच रखिया तां साहब जी ने ओ टका लैके अपनी तली ते रख लिया। कोल बैठे सन बाबा श्री चंद गुरु नानक सच्चे पातशाह दे वड्डे सपुत्र। आख्या बेटा श्री चंद दसो साडी तली विच की है। तां बाबा श्री चंद जी कहन लगे पिता जी तुहाडी तली ते एक टका ही तां है। हुणे सिख आया इसने तुहाडे अगे एक टका मत्था टेकिया जो तुसी अपनी मुठ्ठी विच रख लिया। अपने छोटे पुत्र लक्ष्मी चंद जी कोलों पुछया बेटा तू दस साडी तली ते की है। कहन लगे पिता जी एक टका ही तां है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सारी संगत कोलों पुछया सात संगत तुसी दसो साडी तली ते की है। सारे नी आख्या गरीब निवाज एक टका ही है। ताई सेवा करदे होए भाई लैणा जी उत्थे आए का दी पंड सिर तो एक पासे रख के संगत विच जिथे जगह मिलदी सी बैठ गए। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भाई लैणा जी नूं कोल सद्या आख्या लैणिया इथे आ जी गरीब निवाज लैणिया तू दस बई साडी तली ते की है। सात सगत बोलो श्री भाई लैणा जी दे हाथ जुड़ गए बेनती कीती गरीब निवाज मैं कौन हां के दसां के तेरी तली ते की है। नहीं लैणिया दस बई जो वेखे ही ओही दस। ता भाई लैणा जी हाथ जोड़ के कहन लगे गरीब निवाज आप दी तली ते 14 लोकां दी पातशाही है और जे ए मेर परया हाथ तू जिस दे सिर ते रख देवे ना ओ 14 लोकां दा पातशाह बन सकदा है। सात सगत बोलो श्री हां भाई गुरु नानक दे जिसने जिस भावना नाल गुरु नानक नु पूजया गुरु नानक ने उसनु ओ जा फल देता। इथे तां सिदक और प्यार दी गल है। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर ते जितना कोई वड्डा सिदक दा झोल लै के आएगा उतनियां ही बख्शीशां दी दातां गुरु नानक कोलों लै के जाएगा। सत सगत बोलो श्री इस वास्ते पंजवें

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आ जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगतां, मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नूं। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां नूं। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरा चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोला जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात झोलियां विच भर के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही झोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो झोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। पाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई पाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी।
साहब जी ने भाई लहने नु कोल सदया, अपने हृदय नाल ला के भाई लहने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया, अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हन और की कहिंदे।

और तूफान तो नहीं डरते, सात सगित बोलो श्री। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, हे वाहेगुरु।

गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्होंने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना हुंदे ना ओ उथे एक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी

पहले पहरे आपने उठ के तीजे पहरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पहर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पहर हुंदा

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जाती। सात संगत बोलो श्री तुरते हुए पिछली प्यारी अदा।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इथो दी मेनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच भावना लिया के आके गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी इशनान दी सेवा करनी। ते जदो साल बीत जाना ते गुरु अंगद देव पातशाह ने बुला के बाबा अमरदास जी नू एक परना दे देना ते ओ परना लै के बाबा अमरदास जी सिर ते बंद लेंदे सन। सारे साल दी सेवा दा फल की मिलना एक परना, लेकिन कदे मन विच नहीं आया मैनू एक परना ही मिले है एडी सेवा करके। आख्या नहीं आजे जिंद भी लग जावे गुरु दी सेवा विच ता ए थोड़ी है। साथ संगत बोलो श्री सेवा करदियां करदियां आज 12 साल दा आखिर

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहे है, एडा मीह पै रहे है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते पहुंचे,

क्योंकि मन विच श्रद्धा सी कि ए जल मैं गुरु वास्ते लेके जा रहे ते सच्चे पातशाह दे इस जल दे नाल इशनान कर। जो जल दी गागर ना टिकन दी खड़ाक होया अंदरों जुलाहे ने पूछया तो

ख्याल रख तेरी सेवा और तेरे नित नेम विच फर्क ना पवे ता बख्शीशा दा हकदार होवेगा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह इस शब्द विच बख्शीश।

एतन होते खाक में माणी गौर करे एतन होते खाक निमाणी गौर करे अज मिला शेख फरीदा तत्म पूंजड़िया अज मिला शेख फरीदा तत्म पूंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी

चलने चल हार बिचारा ले मनो चले चलन हार विचार ले मनो गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिखिनो जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गहे

छिन छिन और बेहात है, फूटे कर जो पानी सो दिन आवन लागा, सो दिन आवन लागा।

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कह कबीर सुमरे प्राणी कैद कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कावी से खुसाए खां सबे उठ जासी।

मुकाम ता पर जानिए जा रहे ने चलो दुनिया कैसे मुकामे दुनिया कैसे मुकामे।

नवी म्यूजिक मेमोरीज इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहले शब्दों की कैसेट संगतां दे वास्ते भेंट कीती है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी दे मैंबरां नूं अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

लोक मत से रखने वास्ते तेरे चरना से पंच सदके अग्नि गोविंद सिंह तेरा ही करना शुक्र है जे गुरु के प्यारे गुरु के सुख दीदार होते करने वास्ते जान ते फिर इस मन नाल जान इस ख्याल नाल जान के धन सो दे इस जहां तू वसिया मेरे सजन मीत पूरा है मेरे सजन ते मीत मित्र घनेरे करत की मेरा कृपा देखो धन सो मीत धन सो देश मेरे सज्जन ते